शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Where cultures connect, CJMR 1320, the voice of the city.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: ガジデガブル。
1: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी आग लगेगी आग लगेगी।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: थोड़े चाते बहुते दर्द जो दिल दे विच लको गया है। लै मां तेरा सियाने वर्गा पुत परदेसी हो गया है, परदेसी हो गया है।
1: Where cultures connect, CJMR 1320, the voice of the city.

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: चंडीगढ़ का सेक्टर 26 च सोमवार देर रात एक बार में नौजवान विचकार झगड़ा हो गया ते झगड़े दौरान हुई गोलीबारी च दो लोग जख्मी हो गए उथे चंडीगढ़ तो SSP दा कहना है कि मामले दी जांच कीती जा रही है ते जल्द ही गोली चलाने वाले हमलावर पुलिस दी गिरफ्त च होणगे।

कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे, गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320
1: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

0: पूछना।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: सानू मंजला ना प्यार विरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.
2: और अब पंजाब से बड़ी खबर का रुख करते हैं। मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मूसेवाला की कार पर 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई।

0: लावल
1: ओके
0: जाओ। आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं आनी। कुछ तेरिया ने, कुछ मेरिया ने, तेरा मिलना तेरा विछड़ना। तू कदे परछावें तो नेड़े, तू कदे सब तो दूर। तेरा हासा तेरा रोना, ते कदे कदे एकदम चुप होना। सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया, निक्किया चीजा च खुश होना सिखिया, उच्ची उच्ची हसना सिखिया, दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया। हां खुशी है मैनू तो जिंदगी किदा जीनी है ए दसिया, पर अफसोस तेरे बिना किदा जीनी है किते ए नहीं दसिया। गल हुण संघनी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है, दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है। ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया, जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या। विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

0: हम भी दिमाग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते.
1: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
2: Where cultures connect. CJMR 1320.
3: चावला एंटरटेनमेंट बड़े मान दे नाल पेश करदे ने सात समुद्रों पार अपनी बोली अपना विरसा अते अपने सभ्याचार नु समर्पित रेडियो प्रोग्राम रंगला पंजाब.